0: साथै हिन्दी चलचित्र टक्सी
1: चेहरे पे नकाब डालकर अपने गम को छिपा सकते हो, लेकिन तकदीर में लिखी बर्बादी को नहीं।
2: मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा
3: बाबा, मुझसे नफरत करते हैं।
0: कलाकारहरू रकिङ स्टार यश, कियारा अडवाणी, तारा सुतारिया, नयन तारा, राज शेखर लगायतका कलाकारको प्रस्तुति।
4: कोई आखिरी ख्वाहिश?
5: ज्यादा कुछ नहीं, तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के अंदर खींचना चाहता हूँ। खींचने देगा?

0: साथै हिन्दी चलचित्र टक्सी
1: चेहरे पे नकाब डालकर अपने गम को छुपा सकते हो, लेकिन तकदीर में लिखी बर्बादी को नहीं।
2: मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा बाबा।
3: आप मुझसे नफरत करते हैं।
0: कलाकारहरू रॉकिंग स्टार यश, कियारा अडवाणी, तारा सुतारिया, नयन तारा, राज शेखर लगायतका कलाकारको प्रस्तुति।
4: कोई आखिरी ख्वाहिश?
5: ज्यादा कुछ नहीं, तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के अंदर खींचना चाहता हूँ। खींचने देगा?

0: समय दिवसो 3 बजे र साझा 6 बजे
1: सब शांति से सूरज जाता तो हजारों सालों से शांति होती है भाई कहा ये सारे
2: इसका अंजाम क्या होगा ये तुम जानते ही होगे
3: इस टाइम आई एम कमिंग
4: अन्नपूर्ण चलचित्र मन्दिर बेसी सहर सम्पर्क 97497 38798
5: आई एम होम

0: सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुलेर जियो
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: बजे बजे चाकुते रेडियो नेबरी तो भाई मु भिजो रेडियो रे रेडियो मस्तंग दिरी तमु केरी समाचार खल खाइबो
1: आमे दिने गम ने बसमले आमे ते छलो जे थिजो
0: बर्थाली दे सेवा ग्रही मरकरी नेपाली कांग्रेस सभा केन्द्रीय सदस्य रे लमजुम द काले आरक्षण कोठा बे केन्द्रीय सदस्य मे उम्मीदवार पि बरी प्लुले जाना नेता मन्यु
2: के मय रेडियो मस्तंग दि काले दिनै नानर बे 8 बजे खबे तमु के समाचार नेबरी आमले ओ दुख

देवेश सर सातर्वे मुनिमय सञ्जाल र रिया बद्धमु बतायो आमो समूहजी भोटेकोसिरी खबर भोटेकोसिरी पीड़ित मै लागि सहयोग लबतैमो जनचेतना आमो समूहजी 15,000 पिमा।

लमजुंगरी 20 वर्ष उमेर 8-9 रुपये 15 जना रिमा मैदी आधी वर्ष 82-83 गर्भपतन लैम चम्मा दिदी 13 जना मेडिकल विधि त क्या विषय हौलो जना सर्जिकल विधि त क्या गर्भपतन लैम प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालयन तथ्याङ्क अनुसार पालिका रूपरी चोई विषय ताई भन्दाले मध्ये नेपाल अरी 6 जना लैम छलायो बेसी चार नगरपालिका रिप्लिउलो जनाजी मर्सेङ्गी दोर्दी देर सुन्दर बजार नगरपालिकाजी कृकी जना रिमे मैजी मेडिकल विधि त क्या गर्भपतन लैम विषया रायनस नगरपालिका कोलासोथ दुध पोखरी नाश पालिका विषया गर्भपतन लम्मै मृ मैनस कोलमुम रिमे मैनस संख्या विषया आर्यवाद जनस्वास्थ्य कार्यालय लमजुङर वरिष्ठ जनस्वास्थ्य निरीक्षक दीपक बोमजनजी बीम बोमजना अनुसार चौभन्दा 90 वर्षरी 81-82 जिल्लारी 20 वर्ष 9 रुपये 11 जना रिमे मेजी मेडिकल विधि दक्या गर्भपतन लैम आर्थिक वर्ष 80-81 चो संख्या 17 जना मूलो छलायो आर्थिक वर्ष 82-83 छिलारी सर्जिकल विधि दक्या गर्भपतन लम्म मधेरी न्यौलो जना मुबारी न्यौलो जना बेसी सर म 81-82 विषय जिल्लारी प्लेलो जना रिमे मेजी सर्जिकल विधि दक्या गर्भपतन लैम चो मधेरी बेसी सरहरी 16 जना दिएर राई सहसारी 3 जना मले सबै तथ्याङ्करी 20 वर्ष 9 रुपये रिमेमजी गर्भपतन लभ संख्या घट्दैछ याले बिनी रिमे महिना गर्भधारण दिएर 40 रुपये गर्भपतन अवस्था विषय आज यो गम्भीर मुभा बेम फोजनाचर बी स्वास्थ्य चौकी प्रसूति सेवा दिएर व्यवस्थित बने भए लागि चैदिव सामानमय सहयोग लैम गर्भवती दिएर सुत्केरी मृमै लागि सस्ता रह्यौं छ्याले दिएर सजिलो तरिकाजी प्रसूति सेवा पिभा उद्देश्यजी डेलिभरी बेड दिएर अटोक्लेभ मेसिन पिम हृदय क्यायौं सेवा ताइना लागि विवाह नारादी बालो मुटु फाउन्डेसन नेपाल मनोज एसोसिएसन फ्रान्स र प्रोजेक्ट सूर्य पेरिस फ्रान्सेन आर्थिक सहयोगी सामान मे पिवा फाउन्डेसन नेपाल बेयर अध्यक्ष धनबहादुर तमुजी बिवा नासपालिका उपाध्यक्ष गमी माया तमुसुजी स्वास्थ्य चौकीले चैतिप सामानमय युवा लिसु फसेनोभा मृमै दिएर सुत्केरी मृमै लागि नासरायो आज थप सहज दिएर सुरक्षित गुणस्तरीय प्रसूति सेवा योबा बीम विश्व नगरपालिका सातर मुभा वडास्तरीय महिला सञ्जालजी रसुवा भोटुको सिरी वै पीड़ितमै लागि सहयोग लभा तैम सञ्जालय अध्यक्ष मीना बस्नेत रावलैन अध्यक्षतरी शनिबार दिवस सञ्जालयन बैठकले वडास्तरीय मृमै सञ्जालजी आबद्ध मुभा 13 वटा आमा समूहजी सहयोग लभ निर्णयलाई म सञ्जाल भएन निर्णय अनुसार जनचेतना आमा समूहजी शनिबार रह्यो पीड़ित महिना लागि 15,000 रुपियाँ सहयोगलाई खाइमो समूहजी विपत्री प्रतिभा परिवार महिना राहत दिएर सहयोग लभ उद्देश्यजी प्रधानमन्त्री देवी प्रकोप उद्धार कोसरी चुमु जम्मा लमिबा तैम मर्सङ्गी फेते तखुबे लागे छिजी फेते झिउ भन्दा वैसो क्रेटे फेरि तिखे

0: साथै हिन्दी चलचित्र टक्सी
1: चेहरे पे नकाब डालकर अपने गम को छुपा सकते हो, लेकिन तकदीर में लिखी बर्बादी को नहीं।
2: मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा बाबा।
3: आप मुझसे नफरत करते हैं।
0: कलाकारहरू रकिङ स्टार यश, कियारा अडवाणी, तारा सुतारिया, नयन तारा, राज शेखर लगायतका कलाकारको प्रस्तुति।
4: कोई आखिरी ख्वाहिश?
5: ज्यादा कुछ नहीं, तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के अंदर खींचना चाहता हूँ। खींचने देगा?

खुदा किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अल्लाह को बनाया इसीलिए वो खास बात खुदा में है।

0: साथै हिन्दी चलचित्र टक्सिक।
1: चेहरे पे नकाब डालकर अपने गम को छुपा सकते हो, लेकिन तकदीर में लिखी बर्बादी को नहीं।
2: मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा बाबा।
3: आप मुझसे नफरत करते हैं।
0: कलाकारहरू रकिङ स्टार यस, कियारा अडवाणी, तारा सुतारिया, नयन तारा, राज शेखर लगायतका कलाकारको प्रस्तुति।
4: जरा कुछ नहीं, तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के अंदर खींचना चाहता हूँ। खींचने देगा?

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले राज्य
1: मर्सिंग एफएम
2: 95 मेगाहर्ट्ज
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजे को छ
4: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी